0: इस बात को कहने के लिए अभी मेरी उम्र बहुत कम है, पर सभी इंसान ने ऐसे कर्म करने चाहिए कि उनके जाने के
1: The voice of the nightingale of India, Sarika Singh.
0: जो नहीं जानता वो सब उन्हें दिल से याद करेगा।